कश दिचिनी बेमी बर तू मंदिचिनी खिलाली जौनम खिलाली जौनम खिलाली मंकी जी है रौनम खिलाली खिलाली जौनम खिलाली।